0: ये अल्लाह से मजाक ना करो, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानका। यूनुस पुकारे तो किसको?
1: अल्लाह।
0: यूनुस ने किससे दुआ मांगी है?
1: अल्लाह।
0: यूनुस नबी नहीं, उससे पहले पैगंबर गुजरे कि नहीं गुजरे? आदम ने पुकारा तो किसको? रब्बना ज़लमना अन्फुसना वइल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। आदम ने किसको पुकारा? अल्लाह। और नूह ने किसको पुकारा? इल्लम तग़फिर ली वतरहमनी अकुम मिनल ख़ासिरीन। ज़करिया ने पुकारा तो किसको पुकारा? या ज़करिया खड़े इज़नादा रब्बहु निदा निदान खफिया। रात का वक़्त है, अल्लाह का पैगंबर है, हाथ बांधे खड़ा है। ईमान से कहें, पैगंबरों ने नमाज पढ़ी, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा ने भी नमाज पढ़ी के नहीं? आप जो नमाज पढ़ते हैं, आपको किसने सिखलाई है? कुरान में नमाज का तरीका है? उलमा बैठे, उलमा को तो खैर पता होगा। कुरान कहता है नमाज पढ़ो, पढ़े कैसे? कुरान तो हमें कह देता है जी नमाज पढ़ो, कैसे पढ़े? अल्लाह ने फरमाया, वरना कुरान अरबी, लुगत अरबी, जबान अरबी, और फिर अरबी तो ऐसे ऐसे बलीग गुजरे, ऐसे ऐसे फसीह गुजरे हैं कि जिन्होंने बगैर नुकत के किताबें लिख डाली। इतने बड़े अदीब अरब के लोग थे। अगर सिर्फ किताब काफी होती, अल्लाह पाक कुरान उतार देते और मक्के वालों को कहते भी किताब रखी है, खोल के पढ़ लिया करो और जो जो हुक्म है उस पर अमल। लेकिन कुरान आया थी मुसलाता नमाज कायम करो, कैसे करें? अल्लाह मियां, ज़कात अदा करो, कितनी? हज करो, कैसे करें? एहराम कैसे बांधे? किधर से बांधे? नियत क्या करें? तवाफ के चक्कर 7 करें 8 करें 100 करें कितना? सफा मरवा ठीक है जी है, दौड़े तो किधर से दौड़े? कैसे दौड़े? कितने चक्कर दौड़े? ये सारा नमूना कौन सिखलाएगा? और किसने सिखलाया? सब कह दो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। जितने दफा मैंने आप लोगों को दरूद पाक बिल्कुल पढ़ लिया करें फौरन। ये सारा नमूना किसने सिखलाया जी? हजूर पाक। ठीक है ना जी? अब हजूर पाक ने जब सिखलाया तो आप जब नमाज पढ़ते थे, आप भी ये फातिहा पढ़ते थे? ये जो आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हजूर पढ़ते थे? अगर ना पढ़ते हम क्यों पढ़ते? एक वाजिब बात है ना, हम आपको तंग बना लेते, वरना सारा कुरान छोड़ के हम पहले जो सूरत फातिहा पढ़ते हैं हर नमाज में। 30 सिपारे कुरान मौजूद है, यासीन भी नहीं पढ़ते, बड़ी मुतबर्रिक सूरत है, सूरत मुल्क भी नहीं पढ़ते, मुजम्मिल भी नहीं पढ़ते, हर रकात में पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बजा। यही बुनियाद है, अगर समझ आ जाए तो मसले सारे हल हो। कि जब मेरा नबी पैगंबर खड़ा है और कहता है कि रहमान भी तू, रहीम भी तू है, मालिक यौमिद्दीन भी तू है, और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, खालिस तेरी इबादत करती है और खालिस तुझी से मदद चाहती है, और दिन में 5 दफा फर्जों में, फिर सुन्नतों में, फिर नवाफिल में, फिर तहज्जुद में, हर जगह पैगंबर। और हदीस सिया के अंदर मौजूद है, बीबी ऐशा कहती है काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बे आयतिन, एक आयत पढ़ते पढ़ते मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा ने सारी रात गुजार दी, सुबह की घड़ी आ गई। वो आयत कौन सी थी? इन तुअज्जिबहुम

उसमें बिठा के जब हम रस्सी से खींचेंगे तो पैगंबर का वजूद मुबारक जो है वो उस आग के अंदर चला जाएगा। हजरत इब्राहिम चुप करके बैठी है, हजरत जिब्रील ने कहा फसअल मिन अल्लाह, अल्लाह से तो सवाल कर। हजरत इब्राहिम फरमाते हैं जिब्रील मुझे ये तो बताओ कि मेरे रब का हुक्म ना हो तो ये आग जल सकती है, किसके हुक्म से ये आग जल रही है? अल्लाह के हुक्म के बगैर ना पानी जल सकता है, ना आग जल सकती है, ना आसमानों से बारिश बरस सकती है, ना दरख्तों का कोई पत्ता हिल सकता है। हजरत जिब्रील कहती है बेहुक्म रब्बिल जलील, के खलील ये अल्लाह के हुक्म से जल रही है। हजरत खलील कहती है कि जिब्रील वल खलील राज़िन अला हुक्मिल जलील, अगर ये अल्लाह के हुक्म से है तो मैं भी राजी हूँ, वो जलाने पे राजी है तो मैं जल जाने पे राजी हूँ। अगर मेरा रब मुझे अपनी तौहीद के लिए, अपनी दावत के लिए कि मैंने कह क्या दिया है कि यही कहा कि निमरूद को छोड़ो, मैंने यही अल्लाह के सिवा नफे नुकसान का मालिक कोई नहीं, मुझे अगर इसी जुर्म में मेरा अल्लाह जलाने पे राजी हो गया है तो मैं भी जलने पे तैयार बैठा हूं। सारे मलाइका मुफस्सरीन ने लिखा है कि आसमानों में रो रहे हैं, अल्लाह के मलाइका रो रहे हैं। ये शान नबी है, पैगंबर की शान है कि जिसके लिए नूरी फरिश्ते जो है वो भी सर सजदे में